0: ब्रह्मध्वनि।
1: नमस्ते, वेलकम टू यू ऑल फॉर दिस फोर डेज योगा अप्रिसिएशन प्रोग्राम विद प्रिया। प्लीज सिट कंफर्टेबली इन एनी कंफर्टेबल पोस्चर विथ बैक एंड नेक स्ट्रेट। क्लोज यूर आईज, रिलैक्स यूर होल बॉडी, रिलैक्स यूर होल बॉडी कॉन्शियसली। टेक ए ब्रीथ एंड एक्सेल, अगेन टेक ए डीप ब्रीथ एंड एक्सेल। नाउ अगेन टेक ए डीप ब्रीथ एंड अडॉप्ट नमस्कार मुद्रा। Chant Om three times and a prayer. Breathe in.